0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दंत रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-38 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के थारू भाषा के खोज खबरमा यहाँ उक्रहिन स्वागत बा। खोज खबर से छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हम पात्रो नेपाली पात्रो में फेसबुक रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमा पर्व आज मनैती। आज खैना क्वाटी से शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न जनविश्वास। रसुवा बैयामा पर्क मुइया 470 जानके सब भेटागिल 977 जान आमी बेपत्ता। रसुवा मैलक बहिया पास टिकापुर जानकी के 35 जान सम्पर्कविहीन। सम्पर्कविहीन के खोजी काम के लाग आफन्त हुक्रहिन के आग्रह। वो आज 6 प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना। आप पूरा खबर देशभर नव यज्ञोपति पवित एवं रक्षाबंधन धारणा कैके आज जनै पूर्णिमा पर्व मना जैतिबा। पूर्णिमा के दिन बिहान से वैदिक सनातन धर्मावलंबी से लदिया तलाव पोखरी में जाकर स्नान करके गुरु पुरोहित से रक्षा सूत्र बन्ना चलन बा। तागाधारी गुरु पुरोहित से विधिपूर्वक मंत्र कैगिलक यज्ञो पवित एवं डोरी रक्षा सूत्र धारण कर लसे नए नकारात्मक तत्वों से सुरक्षा पैना धार्मिक विश्वास बा। मानव रक्षा के लाग जप तप ओ पूजा कैकर मंत्र कैगिलक रक्षाबंधन अर्थात डोरी वैदिक परंपरा के मंत्रोच्चारण करती ब्राह्मण पुरोहित से यजमान के दाहिन हाथ में बाहन देना कह जाए। आज झुक दिन ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य कहकर 3 वर्ण के तागाधारी आपन जनई फ्यार पर्ना विधान शास्त्र में उल्लेख बा। याकर लाग श्रावण शुक्ल चतुर्दशी थे से कपाल खौदैना कैकर एक छाक से खाके चोखो कैकर बैठ जाइत। यसिन व्रत बैठल से तागाधारी पूर्णिमा के दिन बिहान पोखरी ताल तलाव लदिया व कुंड में जाके गये गोबर खरानी दत्युत्तम दत्युन सप्तमृतिका लगायत स्नान करथ। स्नान पाछ जौती लो कुश से ऋषि हुकैन तर्पण कैकर वैदिक रुद्राभिषेक पद्धति से मंत्र कैगिलक लौव जनई फेर जायत। अरुंधति सहित कश्यप अत्रि भारदास विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठ ओ अगत्य कैकर 8 ऋषि पूजा एवं तर्पण करना हुईलक मार। आजुक दिन ऋषि तर्पणी फे कई न कई जाइत। जनै पूर्णिमा के दिन 11 मेराए गेड़ागुड़ी मिलाकर भिजाकर टूसा उमारकर बना गैल क्वाटी खा जाइत। असी का क्वाटी बनाए के खैल से शरीर में रोग नहीं लगना पेट सफा होना वो वर्षायाम भर खेतीपाती के काम कर बेर शरीर में लागल जूर निकाल के भीतर से तातुल संचार करना करना धार्मिक एवं आयुर्वेदिक शास्त्रीय मान्यता बा। धेरना मेरा एक गेड़ागुड़ी मिला के बनेल क्वाटी रस खाईबेर शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि होना आयुर्वेद के चिकित्सक कुकन के कहबा। इसे जार लगल से रुघाखोकी जसिन रोग निको होना विश्वास कह जाए। नेपाल के तराई क्षेत्र में भर आज के दिन दीदी बहिनी हुक्र दादू भैयन राखी बहन के ई पर्व मना जायत। इसे दीदी बहिनी और दादू भैयन के बीच में प्रेम संबंध बढ़त करना सामाजिक मान्यता बा। अब ये परंपरा पहाड़ी क्षेत्र में फिर बढ़ लागल बा। रसुआ विनाशकारी बहिया के कारण जैन जवियन के संख्या 469 पुगल बा। गृह मंत्रालय के विपद पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्य शाखा से आज बिहान 7:30 बजे सार्वजनिक करल पाचक प्रतिवेदन अनुसार
977 जना आम्ही बेपत्ताबाट। मन्त्रालयकै अनुसार फेला पारल 469 सब मध्ये सबसे धेर चितवनमा 178 जना फेला परल बा। अस्तहे नवलपरासी पूर्वमा 110 जना, गोर्खामा 44, नुवाकोटमा 37 जना, धादिङमा 33 जना, तनहुमा 28 जना, नवलपरासी पश्चिममा 27 जना हो, रसुवामा 12 जहिनके सब फेला परल बाट। विपदमा पर्क 73 जना घाइल बाट, जेम्नसे रसुवामा केल 43 जना घाइल बाट। हालसम 3,253 जना जीवित उद्धार करगिलक मन्त्रालय जनाइलबा। सम्पर्क विहीन रहल 977 जना मध्ये विदेशी नागरिक ओ सुरक्षा कर्मीके संख्या फे धेर नगबा। सम्पर्क विहीन हुइयामा विदेशी नागरिक 517 जना, नेपाल घुमाइलक विदेशमा बैठना नेपाली 127 जना, सुरक्षा कर्मी नेपाली सेना 45, नेपाल प्रहरी 28 ओ सशस्त्र प्रहरी बलके 13 जना, स्थानीय रसुवा से 161 जना हो, मकवानपुर से 66 जना, भन्सार कार्यालय के कर्मचारी 15 हो, अध्यागमन कार्यालय के कर्मचारी 4 जना रहलबाट। विपद प्रतिकार के लाग देशभर 9,405 सुरक्षा कर्मी परिचालन कै गिलबा। जेम्न नेपाली सेना के 4,243, नेपाल प्रहरी के 3,318 ओ सशस्त्र प्रहरी बलके 1,844 जना खटगिलबाट। उद्धार कार्य के लाग नेपाली सेना के 6 ओ निजी क्षेत्र के 9 ठोकै के जम्मा 15 हेलिकप्टर प्रयोग हुइति रहलबा। खोज खबरमा रसुवामा आयल बहियापासा टिकापुर जानकी के 35 जना सम्पर्क विहीन लगायत के खबर बाँकी बा।

0: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
1: थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकी नसकी सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन त जानु पर्यो जस्तै लाग्छ
0: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार
3: आप बचल खबर पदौ रसुआम अहिलक बहिया पाछ टिकापुर के 29 जना सम्पर्क विहीन हुलबाट टिकापुर नगरपालिका के तथ्याङ्क अनुसार टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 के 23 जना 5 के 5 जना वडा नम्बर 7 के 1 जना सम्पर्क विहीन हुलबाट आमिनसम वडा नम्बर 1 समितिपुर के तुलाराम चौधरी ओ दिलबहादुर चौधरी शक्तिनगर के रमेश कुमार चौधरी वडा नम्बर 9 के बालकुमार चौधरी ओ वडा नम्बर 4 के देशराम चौधरी कै के 5 जना व्यक्तिभर सम्पर्क माइलबाट यी 5 जना बाहेक और 29 जना संग बहिया आयल पाछ सम्पर्क विहीन हुइलक खबर पागिलक टिकापुर नगरपालिका के सूचना अधिकारी देवी प्रसाद आचार्य जानकारी देहलबाट अस्तकै के जानकी गाउँपालिका के 6 जना व्यक्ति फे बहिया पाछ सम्पर्क विहीन हुइलक जानकी गाउँपालिका के वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी जानकारी देहलबाट सम्पर्क विहीन हुकन के खोजी तथा उद्धार के लाग सम्बन्धित निकाय संग समन्वय हुइती रहल जनागिलबा रसुवा के भोटीकोशी क्षेत्र मैलक बहिया पाछ टिकापुर नगरपालिका के वडा नम्बर 5 मणिकापुर के 5 जना सम्पर्क विहीन हुलबाट 5-6 पटक काम के सिलसिलामा रसुवा के धुन्से हाइड्रो पावर क्षेत्रमा पुगल हुक्र उहाँ काम करती रहल रह भदौ 10 गते भोटे कोशी क्षेत्र मैलक भारी बहिया पाछ उहाँ हुक्रहीन संग सम्पर्क हुई नै स्याकल परिवार के सदस्य के कहाइबा चुनकी थारू के छावा पूर्ण बहादुर थारू बाबा सकुशल रहल खबर सुनक लाग अपन हुक्र अस्या लगती रहल बतैलबाट सम्पर्क विहीन 5 जहिन के अवस्था बारे जानकारी नै आइल पाछ परिवार तथा आफन्त चिन्तित बनलबाट उहाँ हुकन के खोजी तथा अवस्था के जानकारी लिह सम्बन्धित निकाय संग समन्वय हुइती रहल हो तबहुन फोन सम्पर्क तथा कौनो खालके खबर नै अइलक चन्द्र बहादुर थारू के भतिजी बतैथ और संपत कमल नई अलग कमल बहादुर चौधरी के छावा दोर्जे चौधरी आपन बाबा हुक्र सुरुंग ठुनगिल खबर आइल पाछ अपन वहां हुक्र सुरक्षित भेज जैना आशा में रहल बटैथ यहां से काम कर गैलक युवा हुक्र संपर्क विहीन हुई पाछ चिंता बढ़ल हो हुक्र मध्य ढेर जाना जल विद्युत आयोजना के सुरुंग मार्ग में काम कर गैलक परिवारजन बटैल बाट संपर्क विहीन हुक्र सुरुंग में फसल खबर आयल बा वहां हुक न काम के लाग वहां लै जविया समितिपुर के तुलाराम चौधरी हुक्र सुरुंग में फसल हो आमिन सम जिटीह रहल खबर अलग काल बिहान अपुष्ट जानकारी दिल बाट वकपा छ तुलाराम समफे तुलाराम संगफे संपर्क हुई सकल नहीं हो घरक सदस्य हुक्र संपर्क विहीन हुई लग दुई दिन जाए बीतबेर फे जनप्रतिनिधि हुक्र कौनो चाँसो नै देखैलक कति परिवार के सदस्य हुक्र आक्रोश व्यक्त करल बाट जानकी गाउँपालिका बहिया पीड़ित के राहत के लाग एक लाख रूपया सहयोग करना निर्णय करल बा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति के काल बैठल बैठक से गाउँपालिका के विपद व्यवस्थापन कोष से ऊ रकम प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष में जमा करना निर्णय करल हो अस्तहे गाउँपालिका के जनप्रतिनिधि ओ अधिकृत स्तर के कर्मचारी हुकन के पांच पांच दिन के सहायक स्तर के कर्मचारी के तीन दिन के ओ श्रेणी विहीन कर्मचारी के दुई दिन बराबर के तलब संकलन कई के राहत कोष में जमा करना निर्णय फे करल बा बहिया में पड़ल गाउँपालिका भीतर के प्रभावित परिवार गाउँपालिका से मनोसामाजिक परामर्श प्रदान करीदिना फे गाउँपालिका से निर्णय करल बा हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइल बा हाल मनसून के न्यूनचापीय रेखा पश्चिम सदर स्थान से कुछ उत्तर तथा पूर्व सदर स्थान के आसपास रहल बा जाकर प्रभाव से हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बदली लगना बा कलशे तराई भूभाग में आंशिक रूप में बदली लागल बा कोशी बागमती लुम्बिनी कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के थोरचे ठाव में ओ मध्य प्रदेश के एक दुई ठाव में हल्का से मध्यम वर्षा हुई रहल बा आज दिन के देशभर साधारणतया बादल बदली लगना बा देश के हिमालय भूभाग के कुछ ठाव में चट्यांग सहित मध्यम स्तर के वर्षा के संभावना बा देश के पहाड़ी भूभाग में ढेर स्थान में चट्यांग सहित मध्यम सम्म के वर्षा के संभावना बा बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में कुछ ठाव में तथा मध्य प्रदेश साथ कोशी प्रदेश के तराई भूभाग में थोड़े ठाव में चट्यांग सहित मध्यम सम्म के वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालय और पहाड़ी भूभाग कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी और तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना बा आज रात देशभर साधारणतया बदली लगना बा कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालय भूभाग के कुछ ठाव और लुम्बिनी कर्णाली उसके सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय भूभाग के थोरचे ठाव में चट्यांग सहित मध्यम सम्म के वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाव ओ कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में थोरचे ठाव में चट्यांग सहित मध्यम सम्म के वर्षा के संभावना बा मध्य प्रदेश तथा कोशी प्रदेश के तराई भूभाग में कुछ ठाव में ओ बागमती गंडकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में थोरचे ठाव में चट्यांग सहित मध्यम सम्म के वर्षा के संभावना बा कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली और पहाड़ी भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनाइल बा खोज खबर में आकुर खबर पलिबा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
2: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। के तपाईँ चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
5: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
6: यही भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन
5: मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
2: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने, साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
6: डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
5: स्थान मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9846770417।
3: खोज खबरमा आप बचल खबर। रसुवाके भोटी कोशीमा बुधबार ऐलक भीषण बहियामा पर्क सुदूरपश्चिम प्रदेशके झण्डसय नागरिक सम्पर्कविहीन हिलबाट कैलाली कञ्चनपुर सहितके जिल्ला मकैका करिब 100 जना सम्पर्कविहीन हुलक प्रारम्भिक विवरण आइलबा। आमिनसम 90 जना नागरिक प्रभावित क्षेत्र मसे सम्पर्कविहीन हुलक विवरण प्राप्त हुल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनाइलबा। विभिन्न धेरनक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त जानकारीके अनुसार आमिनसम 90 जना सम्पर्कविहीन रहल खुलल प्रदेश प्रहरी कार्यालयके प्रवक्ता एसएसपी पदम बहादुर विष्ट जानकारी देहलबाट। उहाँके अनुसार सबसे ढेर कञ्चनपुरके 29 जना, कैलालीके 20, डडेलधुराके 15, बाजुराके 14, बैतडीके 4, दारचुला 3, डोटीके 2, बझाङके 2 ओ अछामके 1 जना सम्पर्कविहीन हुइलक विवरण पागिलबा। यी मध्ये 4 जना प्रहरी कर्मचारी रहलबाट। सम्पर्कविहीन हुइया प्रहरी कर्मचारीमा प्रहरी हवलदार नरेन्द्र प्रसाद भट्ट, प्रहरी सहायक हवलदार हिक्मत महरा, प्रहरी जवान नारद सार्की ओ सशस्त्र प्रहरी जवान विनिता बोहरा रहल एसएसपी विष्ट बतैलबाट। सम्पर्कविहीन हुइयामा रसुवामा ढेर्नक हाइड्रो पावरमा काम गर्न मजदूर, प्रहरी, निजामती कर्मचारी ओ ढेर्नक निजी क्षेत्रमा काम गर्ती रहल कर्मचारी रहलबाट। बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन हुइलक व्यक्तिके विवरण टिपाई प्रहरी आफन्त अनुरोध गरलबा। आमिनसम सम्बन्धित व्यक्तिके आफन्तके विवरण टिपैना काम हुइती रहलबा। बहियामा सम्पर्कविहीन हुइया के संख्या बढ़ सेक्ना अनुमान प्रहरी करलबा। यी समाचारसँग खोज खबर ओराइल। अन्तिममा जैती जैती खबरके मुख्य शीर्षक फेर से एक फ्यारा। रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमा पर्व आज मनाइती, आज खैना क्वाटिसे शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न जनविश्वास। रसुवा बहियामा पर्क मुयनके संख्या 469 जहानके सब भेट गेल, 977 जना आमी बेपत्ता। रसुवामा बहिया आइल पाछ टिकापुर जानकीके 35 जना सम्पर्कविहीन, सम्पर्कविहीनके खोजी कामके लाग आफन्तके आग्रह। ओ आज 6 प्रदेशमा भारी वर्षाके सम्भावना। लिट अब खोज खबर अतरहे प्राविधिक मित्र धन्यवाद दिति। अब खोज खबर से मई छपिलाल चौधरी विदा हुई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।
7: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
8: यही भदौ 20 गते शनिबार का दिन
9: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
7: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
9: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
8: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
10: शेखबहादुर साउद स्मृति केन्द्र टिकापुरको 11 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना। शेखबहादुर साउद स्मृति केन्द्र टिकापुरको 11 वार्षिक साधारण सभा यही भदौ 13 गते शनिबारका दिन बिहान 9 बजेदेखि शेखबहादुर साउद स्मृति केन्द्रको सभा हालमा हुने भएकाले साधारण सभाको सूचना प्राप्त नभएका महानुभावहरूलाई यसै सूचनालाई आधार मानि साधारण सभामा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। शेखबहादुर साउद स्मृति केन्द्र टिकापुर कैलाली।
11: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
12: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
13: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
12: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
13: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
14: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9584899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
15: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सोचेका चुनौली म आफ्ना बैरागले गाउँछु बैस्ता छ भनौले
1: काटे सागो चुनक चुनक जित्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया भया।

0: या बादल आकाश आउँदो चट्ट्याङ चुटुम झरी मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा त्यस्तै भरी
1: आधा स्वर्ग झम्पानी छ आधा स्वर्ग दिदो मर्ने बाँच्ने।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रत गैया झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: के तपाईं चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ
5: अब टिकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
6: यही भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन
5: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
4: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको पुस्त्र र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र पुस्त्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ
6: डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार
5: स्थान मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 98600 0071024 र 9806

0: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सिकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
3: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त बाउ के पाउँछ त्यहाँ?
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काका सबै पाइन्छ नि।
0: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
3: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
6: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
7: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
2: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
6: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 9844846673 र 9814680204।

0: से कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस पाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतनिया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कापी रहिथ कभी पेन्सिल रहिथ कभी झोले फटाका आजिथ का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई थ कबू पेन्सिल हेरा कई थ कबू झोले फटा कई थ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक्ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: खाता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

कटबान से मर लूटू कल आके कर जाने नई नकबान से मर लूटू सीधा साधा मिकिन है प्रेम के रोग लगे लूटू मन इला के अब तो हारे गाँव में महकिन रहा।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सांझ 5 बजे थारू भाषक खोज खबरमा अपना कन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमारो पात्रो और नेपाली पात्रो में भी सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर नगरपालिका के वर्तमान समस्या के विषय में टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ चाशो व्यक्त, आज हुईलक छलफल निष्कर्ष विहीन। प्रधानमंत्री हो मंत्री हुकन के एक महीना के तलब उद्धार कोष में धरपना, मंत्री परिषद के निर्णय र सुवा सड़क संजाल में जोरगिल खुलागिल वैकल्पिक डगर। ओ नेपाल चीन सीमाना मन हिम पहिरो पाछ सिर्जित जोखिम आयम कायम रहला कोर्से, निगरानी करती रहलक चीनिया दूतावास के कहाई। टीकापुर नगरपालिका के वर्तमान समस्या के विषय मन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ चाशो व्यक्त कलबा। आबसम्म चालू आर्थिक वर्ष के बजेट को अख्तियारी निहोक काम संचालन निहुटी रलक अवस्था मन उद्योग वाणिज्य संघ चाशो व्यक्त कलक हो। उद्योग वाणिज्य संघ वर्तमान समस्या समाधान के विषय में टीकापुर नगरपालिका के वडाध्यक्ष कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगारजी ढैकन छलफल समेत कलबा। छलफल में रामबहादुर नगारजी ने कार्यवाहक मानकन जैना विषय मन अपनाऊक एकमत हुईलक वडाध्यक्ष उक्र बटुलबा वडाध्यक्ष के ओर से आपन मठ ओडा नंबर 8 के वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुला ढर लरल। तर कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगारजी आपन बाईपास करक लंडक बजेट न अपना अख्तियारी देह निषेकना, अपना अख्तियारी देह पना हुईल से नगरसभा फिर से करपना अडान ढर पर्च ढरल पाछ छलफल निष्कर्ष विहीन हुई लो। छलफल में सहभागी उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष संतोष खटका फे वडाध्यक्ष के कहाई सकारात्मक ऐलक व जसिक हुईल से नगरपालिका निकास देहपना विषय में एकमत होक जाएपना सुझाव दिला। टीकापुर नगरपालिका के चालू आब आर्थिक वर्ष के बजेट के आब समय के अख्तियारी पालिका से निहिलक ओर से नगरपालिका के कोनो फे काम हुई स्याकल नि हो। छलफल के वडाध्यक्ष वडा नंबर 6 के वडाध्यक्ष बाहेक अन्य सकु 8 वडाध्यक्ष उग्र टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी पत्रकार हुकन के सहभागिता रह। टीकापुर नगरपालिका के वडा नंबर 5 में हात्ती के आतंक मस्ती रहलबा। आजकल दैनिक जसिन रात के समय में वडा नंबर 5 सिमरेनी साहीपुर कर्णमीदारा नुक्लीपुर लगायत के क्षेत्र में हात्ती सतैना करलबाट। रात के समय में गांव में आक घर भटकैना किसान हुकन के धान बाली केरा बाली नष्ट करना करलबाट। रात रातकन हात्ती आकन सतैना करलक कारण यहां के नागरिक हुक्र तरसी ठोकन कर्णमीदारा के स्थानीय प्रसिद्ध हुईलक कन्वीदारा के स्थानीय सिंहराज बुढ़ा मगर जानकारी दिलबाट। नुक्लीपुर मन केरा खेती कटिरलक हर्क बिस्तफे आपन लगायत यहां के अन्य किसान हुकन के फे केरा तथा धान बाली में क्षति पुगेलक बटुलबाट। सरकार मंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सबकु सदस्य के एक महीना के तलब पारिश्रमिक प्रधानमंत्री दैवी कोप उद्धार कोष मन जमा करना निर्णय कलबा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में आज बैठक मंत्री परिषद बैठक से ऊ निर्णय कलक हो। वस्तकन बैठक से बुधवार नेपाल चीन सीमा रसुआगढ़ी एवं भोटेकोशी लदिया तथा तल्लो तटीय क्षेत्र में अलग बाढ़ी से प्रभावित जिला में क्षति पुग्लक मनई व्यावसायिक संस्था के लिए सहुलियत तथा पुनर्स्थापना पैकेज तैयार कर अर्थ मंत्रालय निर्देशन देना निर्णय कलबा। संघ बैठक से भारत से G2G खरीद माध्यम से 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मल खरीद कर कृषि सामग्री कंपनी हन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना समेत निर्णय कलबा। बारिश से सकुन से धीर प्रभावित जिला रसुआ सड़क संजाल मन जोरगिल्बा। भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के अनुसार काठमाण्डौ टोखा छहरे गंगख्वार पुल आप्र नर्जा लच्याङ सरमथली पाटीखार हुइती बोगतीटार कालिका स्थित ढुन्चे सड़क खण्ड 4 चक्के साना सवारी साधन संचालन हुनाकैकन संचालन करलबा। बारिश से मटेरी पुल यहां रसुआ भीतर कलह टिंठो पुल पूर्ण रूप में बगाइलबा नुवाकोट र रसुवा सिमानाके दुई पुल समेत बगलसँग यी जिल्ला सड़क सञ्जालसे विच्छेद हुइल रहल। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछाइनीबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ,
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र?
2: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। रसुवाके भोटेकोसी हुइटी तिर्सुली लड्डेमा अहिलेक बाढ़ीके कारण हालसम्म 557 जनाके सब फेला परल बा। नेपाल प्रहरी सार्वजनिक अलग जानकारी अनुसार बुधबारके बाढ़ीके कारण 557 जनाके सब फेला पारगिलक हो। रसुवामा 13, नुवाकोटमा 38, धादिङमा 40, गोर्खामा 44, नवलपुरमा 134, नवलप्रासीमा 28, तनहुमा 29, सकुन्से ढ्यूर 221, सब चितवनमा भेटगिल्बा। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणके अनुसार 977 जनसम्पर्क विहीनबाट प्रहरीके 28, सेनाके 45, सशस्त्र प्रहरीके 13, भन्सार कार्यालयके 15, अध्यागमन कार्यालयके 4, रसुवा व नुवाकोटके 162 जना सम्पर्क विहीन हुलक प्राधिकरण जनैलबा। नेपाल प्रहरी डेगिलक जानकारी अनुसार हालसम्म 101,473 जनाके उद्धार गरगिलबा। रसुवाके भोटीकोसी लद्यामन बाढ़ी आइल पाछा सम्पर्क विहीन हुलक सुदूरपश्चिम प्रदेशके 141 जना मध्ये 10 जना सकुशल भेटगिलबाट। प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रहरीका अनुसार कञ्चनपुरके भीमदत्त नगरपालिका 3 बैठना सुनिल चौधरी, भीमदत्त नगरपालिका 6 बैठना चन्दा जोशी, बेटकोटके जय राणा सम्पर्कमना आइल फिट। वस्तक सुरेश राणा, सन्तोष राणा, बेलौरीके नवीन चौधरी, आदर्श चौधरी, कञ्चनपुरके राकेश भट्ट, प्रदीप चन्द व डडेलधुराके सुनिल बुधा मगर सकुचल भेटागिलबाट। हुक्रमध्ये 7 जना हाइड्रो पावरमन कामकना मणि व चन्दा नर्सिंहके विद्यार्थी रहलक। प्रदेश प्रहरी कार्यालयके प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदम बहादुर विस्तृत जानकारी दिलबाट। अन्य 2 जना काकर कहाँ गैल कना खुलस्याकल निहो सम्पर्क विहीन हुइलक मनिनके संख्या आमिन 130 रहलबा। एसएसपी विस्तके अनुसार कैलाली के 49, कञ्चनपुर के 34, बाजुरा के 14, डडेलधुरा के 17, बैटडी के 8, दार्चुला के 4, डोटी व बझाङ के 2-2 जना व अछाम के 1 जना सम्पर्क विहीन रलक विवरण बा। सुदूरपश्चिम घर होकन कामके सिलसिलामा रसुवा पुगल हुइलक मजदूर कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी बाढ़ी मना परल बाट। रसुवा स्थित जलविद्युत आयोजनाकी सुरुङ भित्तर बाढ़ीके कारण फसलक मनै नेपाली सेना आज बिहान ठेसे उद्धारकारी तीव्र पलक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसे जनागिल्बा। सचिवालयकी अनुसार जटिल भूगोल जोखिमपूर्ण अवस्थाके बावजुद उद्धार करगिलक नेपाली सेनाके टोली आबसम्म उक्त ठाउँसे 2 जहनके सकुशल उद्धार गर्सेकलक जनाइलबा। पहिरो के कारण बनलक तालसे थप बाढ़ी के जोखिम बढ़ल पाछ चीन तिब्बत जारी उद्धार अभियान स्थगित करगिलबा। अल जजेरिया से चीनिया राज्य संचालित प्रसारक होकनहन उद्धृत गर्दै चीन सरकार उद्धार टोलीहन घटनास्थल से 1 किलोमीटर हट आदेश देलबा। विनाशकारी पहिरो पाछ तिब्बत क्षेत्र के आमिन संयौ मनी बेपत्ताबाट चीन तिब्बत मन पुनः बाढ़ी आइसेकना उच्च जोखिम रहलक बटुटी शुक्रबार उद्धार कार्य स्थगित करलक हो। तिब्बत मन गैलक विनाशकारी पहिरो के 2 दिन पाछ फेर संयौ मनी बेपत्ता रहलक अवस्थामा राज्य नियन्त्रित संचार माध्यम से ऊ जानकारी देलबा। खोज खबरमा फिर्फी विश्राम पछैने निवाती सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
5: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
4: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
5: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
4: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
5: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
4: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
5: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
4: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
5: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
4: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुर।
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825-6772-72।
6: घर त जेनटेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
6: ए हो त, कहाँ पाइँदैछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
7: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
6: अब त म ढुक्क।
8: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
7: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
0: खोज खबर में फेरफेर स्वागत बा। कैलाली के धनगढ़ी स्थित निसर्ग हस्पिटल भोटीकोशी बाढ़ी प्रभावित नागरिक पुनः राहत तथा पुनस्थापना के लाख 11,111,111 रूपया सहयोग करलबा। अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी, स्टाफ नर्स, चिकित्सक तथा शेयर सदस्य के कमती में 1 दिन बराबर के तलब सुविधा से संकलित रकम नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष के खातामा जमा करगिलक अध्यक्ष तीर्थराज पन्त जानकारी देलबाट। वहाँ अस्पताल से हरेक वर्ष मनैती ऐलक हरितालिका तीस के कार्यक्रम स्थगित करलक व ऊ कार्यक्रम के लाग छुट्टिया गिलक रकम समेत बाढ़ी प्रभावित नागरिक हुकन सहयोग करगिलक बटिलबाट ईस्यागर धनगढ़ी स्थित माया मेट्रो अस्पताल फे 3,11,111 आर्थिक सहयोग अलग जनैलबा वस्तक धनगढ़ी स्थित नवजीवन अस्पताल 2,22,222 रूपियाँ सहयोग कलबा अस्पताल बाढ़ी प्रभावित के राहत के लाग प्रधानमंत्री दैवी उद्धार कोष सहयोग स्वरूप रकम कोष मन सहयोग स्वरूप ऊ रकम जम्मा कलक अस्पताल के कार्य निर्देशक चक्र कठाएर जानकारी दिलबाट चैत्य ने पाठशाला फे प्रधानमंत्री देवी कोष राहत मन 1,11,111 रूपियाँ बराबर के सहयोग उपलब्ध करागिलक अध्यक्ष गणेश जोशी जानकारी दिलबाट नेपाल स्थित चिनिया दूतावास नेपाल चीन सीमानामा हिम पहिरो पाछ सिर्जित जोखिम आमिन कायम रहलक बटुलबा शुक्रबार चिनिया दूतावास के प्रवक्ता एक विज्ञप्ति जारी गर्दी दुई देश के अधिकारी हुक र जोखिम के निरन्तर निगरानीमा रहलक बटुलबाट हालै के दिनमा नेपाल चीन सीमा लद्याके उपर के क्षेत्रमा नेपाल के भूगोल उहर के एक सहायक लद्यामा हिम चट्टान के पहिरो गेलबा पहिरो से लद्या ठुनकन सीमा लद्याकसँग पहिरो बनैलक ताल निर्माण हुलबा विज्ञप्तिमा कैकिल्बा ऊ तालमा आब पानी के सतह उच्च रहलको पानी ओभरफ्लो हुई सेकना हुलक से थप क्षति हुई सेकना जोखिम बढ़लबा नेपाल चीन दुनू के लागि उद्धार तथा आपतकालीन प्रतिकार के दृष्टि से अब अवस्था अत्यन्त संवेदनशील चरणमा रहलक वर्षे रहलक दूतावास जानकारी दिलबा पहिरो से बनागिलक ताल से फे तर उहर के क्षेत्रमा रहलक स्थानीय समुदाय व सम्बन्धित कर्मचारी लद्दे के पानी के सतहमा हुइतिरलक परिवर्तन लग्घ से निगरानी कर उच्च सतर्कता अपनाए तथा सम्भावित जोखिम रोकथाम व आपतकालीन प्रतिकारका लागि अग्रिम तयारी कर आग्रह करगिलक विज्ञप्तिमा कैगिल्बा समाचार के संग थारू भाषा के खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर नगर पालिका के वर्तमान समस्या के विषय में टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ चासो व्यक्त आज हिलक छलफल निष्कर्ष विहीन प्रधानमंत्री और मंत्री हुकन के एक महीना के तलब उद्धार कोष मन धरपना मंत्री परिषद के निर्णय रसुआ जोरकिल खुला गेल वैकल्पिक डगर ओ नेपाल चीन सीमाना में हिम पहिरो पाछ सिर्जित जोखिम आयम कामी कायम रहल पहुंचे निगरानी करती रहल चीनिया दूतावास के कहाई लीता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार नेपाली भाषा में 6 बजे खोज खबर सुन सकी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मैं गीता चौधरी विदा टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
9: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड़ हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला लक्ष्मी आभूषण भण्डार सिद्धार्थ चोक टीकापुर कैलाली संचालक प्रकाश भण्डारी सम्पर्क नम्बर 9848531595
10: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन् जस्तै स्कूल ब्याग क्यारिङ ब्याग लगेज ब्याग फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमर गरिन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
11: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टीकापुर कैलाली संचालक राम प्रसाद चौधरी
7: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
12: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
7: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाटा आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगाकर टूफे ओस्ता बनी हो ना वट्रफे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कमरा घूम जाए ता था पाए
13: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
14: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326
15: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।